0: בקלאב. ג'והו, סבילה, פלולים, פלפולו האנם. אשי FM. אשיק FM.
1: Okey, itu dia segmen Hashinya Boleh Telah pun berakhir ya, pukul 7:01 petang sekarang. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Asyik FM. Moi no moi. Semestinya di Ken, Sinin dan aku bertukar sampai jam 8.
2: Moi no moi.
1: Gelam kelam.